0: आने की अलग पुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: राधे भगवान श्री नरेन महाप्रभु जी
1: की जय हो।
0: श्री सियालकपुरी जी महादेवा की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
2: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।

परफेक्ट, हरिओम, रिलैक्स, लाइ डाउन एंड टर्न टू स्टमक एंड लाइ डाउन। यस, इफ यू कैन नॉट लाइक दिस नो प्रॉब्लम, अदरवाइज कंप्लीटली रिलैक्स। Namo Shivaya.

0: for such a divine performance. Now, I would like to invite Sri Raghuvi Prasad Sharma ji to kindly.
1: हमारे सौभाग्य है, हमारी एक कबीर का है, संत मिलिया सुख होसी। जब तक जीवन में संत नहीं आता है, सतपुरुष नहीं आता है, तब तक सुख का आगमन नहीं होता है। और आज आप सबका और हमारा सौभाग्य है कि हम महामंडलेश्वर विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं। आपके तपोबल का जो औरा बना हुआ है, जो क्षेत्र बना हुआ है, उस पावन क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं। मैं इस विश्वविद्यालय के

0: अध्यक्ष श्रीमान रवि जुनीवाल जी, आदरणीय मनोज जी और वीसी ओपी छंगानी जी से निवेदन करता हूं कि वो महाराज जी का माला द्वारा, शॉल द्वारा और स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करें। आदरणीय रवि जुनीवाल जी पुष्प गुच्छ प्रदान करेंगे। संस्थाएं बहुत खड़ी होती हैं, हर व्यक्ति आज संस्थाएं खड़ी करता है, लेकिन संस्थाओं को नैतिकता पे चलाना और आदर्शों को बनाए रखना ये अद्भुत बात होती है। मैं आज इस अवसर पे आदरणीय सागरमल जुनीवाल जी को याद करूंगा। उनका आरंभ प्रथम संस्कृत विद्यालय से हुआ था और उन्हीं की संतति के सद्गुणों से आज ये कार्य विस्तार हो रहा है। एक व्यक्ति का इतना महान कार्य कर देना अद्भुत होता है, गुरुओं की कृपा होती है। स्वागत हो रहा है महामंडलेश्वर परमहंस विश्वगुरु स्वामी महेश्वरानंद जी का, जिन्होंने पूरे विश्व में 3000 केंद्र स्थापित किए हैं भारतीय सनातन संस्कृति और योग के प्रचार के। इनकी तपस्या के फल स्वरूप लाखों लाखों विदेशियों ने साकार अपनाया है और कुछ उदाहरण तो यहां भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इनका जीवन सनातन संस्कृति की ओर मोड़ दिया है और ये इस संस्कृति में आके बड़े आनंदित हैं। स्वागत है हमारे परम पूज्य स्वामी जी का। स्वागत की इस परंपरा में स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आदरणीय ओपी छंगानी जी, कुलपति अपेक्स यूनिवर्सिटी।
1: It is our great honor that we have Shri Kapil Agrawal ji, Ambassador World Peace Council India, with us today. He has been associated with Pujaniya Maharaj ji for many years and has been instrumental in all his endeavors. I would like to request Shri Kapil Agrawal ji to kindly enlighten us with insights regarding the ashram.
2: हरी ओम। सबसे पहले मैनी सैल्यूटेशंस टू माय होली गुरुदेव विश्व गुरु स्वामी महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी। एंड यहाँ पे एक मेरा सौभाग्य है कि गुरु और भगवान दोनों बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं महेश जी गुरु जी को, मैं उनका भी बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर गुरु जी जो अपने क्रोएशिया देश से आके और उन्होंने भारत की नागरिकता ली है, और आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो हिंदी नहीं संस्कृत भी इतनी धारा प्रभाव से बोलते हैं कि आप और हम नहीं बोल सकते। तो हमारे महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी जी का बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, रवि जुनीवाल जी जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपेक्स यूनिवर्सिटी का नाम जो है रोशन किया है, और हमारे ओपी छंगानी जी हमारे वाइस चांसलर अपेक्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सरोज कौजर प्रेसिडेंट राजस्थान संस्कृत अकेडमी, विजेंद्र बंसल जी डॉक्टर और हमारे रघुवीर शर्मा जी जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द पीपल हु केम हियर इन दिस इंटरनेशनल इवेंट, आवर मीडिया फ्रेंड्स, आई वुड ऑल्सो थैंक दिस विश्वगुरु दीपाश्रम शोध संस्थान, श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल एंड अपेक्स यूनिवर्सिटी टू ऑर्गेनाइज द ग्रेट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार ऑफ योगा एंड इंडियन कल्चर। Before giving the introduction of our NGO, I would like to share some things with you about yoga. Yoga is an essential block, building block for transferring this world into a global planet of peace. It makes you child again. When there is yoga in Vedanta, there is no impurity, ignorance and injustice. Yoga is not a religion, it is a way of living whose aim is healthy mind in a healthy body. As my beloved Gurudev Swamiji always told, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग वैन कम्पेयर टू द ग्राम ऑफ प्रैक्टिस। आप कितने भी सेमिनार्स में चले जाओ, कितना भी टीवी देख लो, थ्योरिटिकल कितना भी कर लो, लेकिन जो योगा है वो करने से ही होगा। तो हम जब तक योगा करेंगे नहीं, योगा होगा नहीं। तो मेरे स्वामी जी यही कहते हैं कि टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग वैन कम्पेयर टू अ ग्राम ऑफ प्रैक्टिस, देयरफॉर वी मस्ट नॉट ओनली बी एक्टिव लिसनर्स बट प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट द टीचिंग्स ऑफ आवर गुरु। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कि आजकल का जो माहौल है और जिस सब्जेक्ट पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, योगा इन इंडियन कल्चर, हम लोग जो है वेस्ट वाले हमारे सामने सब बैठे हुए हैं जो हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन योगा, इंडियन खाना ये सब अपना रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। तो आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS IPS जज बनेगा, लेकिन वो तब बनेगा जब वो स्वस्थ होगा। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खान पान। तो हम लोग जो है अपने खाने और पीने पर बहुत ध्यान रखें, योगा करें, अच्छी चीज़ें खाएँ, फल खाएँ, स्वामी जी का यही संदेश है, ताकि हम आगे हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। सबसे अब मैं इंट्रोडक्शन के लिए चलता हूँ। हमारे जो ये जो NGO है योगा इन डेली लाइफ इंटरनेशनल, स्वामी जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो है हमारी गुरु परंपरा में, हम गुरु परंपरा के बारे में बात करते हैं। हमारी गुरु परंपरा में सबसे पहले भगवान अलकपुरी जी आए, जिनके नाम से हिमालय में एक नदी भी बहती है, अलकनंदा, जो भगवान स्वयंभू शिव का अवतार थे। सबसे पहले हमारी परंपरा में उन्हीं का आगमन हुआ। उनके जो शिष्य बने वो बने हमारे देवपुरी जी बाप जी, जिनका जो है प्रवास वो है बड़ी खाटू, कैलाश खाटू श्याम जी के पास। स्वामी जी ने उनका आश्रम है, उनका बहुत बड़ा आश्रम है, आप सब कभी भी खाटू श्याम जी की तरफ जाएं तो वहाँ ज़रूर पधारें। उनके बाद जो है हमारे माँ प्रभु जी आए, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी, जिनकी गादी बड़ी खाटू नागौर जायल में स्थित है। वहाँ पर भी स्वामी जी ने 3 आश्रम्स बना रखे हैं, गौशाला ही बना रखी है, और काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ पर योगा और मेडिटेशन के लिए आते हैं। उसके बाद में हमारे गुरु जी हृदय हिंदू सम्राट स्वामी माधवानंद जी, जो उनके दीप नारायण महाप्रभु जी के शिष्य थे, उनकी गादी जाडन पाली में स्थित है। और उन्हीं के शिष्य जो हैं हमारे स्वामी जी और बिलव गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी, जिन्होंने अभी तक जो है 108 हमारे आश्रम्स हैं 21 कंट्रीज़ में। स्वामी जी के 108 आश्रम हैं बड़े बड़े, छोटे तो पता नहीं कितने हैं, वो गिनती नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े बड़े आश्रम हैं हमारे 21 कंट्रीज़ में आश्रम हैं। मैं कुछ कंट्रीज़ का नाम आपको बता दूंगा, जिनमें से चेक रिपब्लिक में 10 आश्रम हैं, और चेक रिपब्लिक की 10% पॉपुलेशन स्वामी जी के शिष्य है। वियना में हमारे 6 सेंटर्स हैं, क्रोएशिया में हमारे 15 सेंटर्स हैं, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, UK एंड USA। आई सल्यूट विश्वगुरु स्वामी महेश्वरानंद जी और ऑन कम्प्लीटिंग 52 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर द मैनकाइंड। स्वामी जी को 52 साल हो गए सोशल सर्विस मैनकाइंड की करते हुए। इन दिस 52 ईयर्स ही कम्प्लीटेड 54 राउंड्स ऑफ ग्लोब। 54 बार स्वामी जी ने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने 54 बार पृथ्वी की परिक्रमा करी है एरोप्लेन से। सिंस 1970 इज एक्टिवली टीचिंग योगा विद द सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस टू द वेस्ट। टुडे ही हैज मोर देन 80 मिलियन डिसेबल्स। 8 करोड़ स्वामी जी के शिष्य हैं, जिसमें से 1 करोड़ जो है वो फॉरेनर्स हैं। 1947 के पहले जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज हमारे पे शासन कर रहे थे, आज वही अंग्रेज 1 करोड़ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। विश्वगुरु जी इज़ अ रियल सेंट हू सैक्रीफाइस हिज होल लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। ही मेड मिलियंस ऑफ पीपल वेजिटेरियंस बाय प्रोपेगेटिंग नॉन वायलेंस इन थॉट्स, वर्ड्स एंड स्पेशली डीड्स। उन्होंने जो वेजिटेरियन बनाया है वो खाने में ही नहीं बनाया है, उनके थॉट्स भी उन्होंने वेजिटेरियन बना दिए। कोई भी हमारा शिष्य स्वामी जी का कोई आक्रामक, कभी गुस्सा, ये सब उन्होंने स्वामी जी का हटा दिया, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, पीस। इन 2007 विश्वगुरु जी फाउंडेड द श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल इन कमेंडेशन ऑफ हिज बिलॉर्ड मास्टर श्री स्वामी माधवानंदा। इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम फॉर फॉस्टरिंग वर्ल्ड पीस थ्रू टॉलरेंस, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग रिलीजन्स, कल्चर्स एंड नेशंस। इट इज़ वर्क रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस गिविंग इट्स स्पेशल काउंसिल टू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हमारी जो ये काउंसिल है श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल, इसको UN से एफिलेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक फॉर्म का हमको मिला हुआ है, सब स्वामी जी की कृपा है। द काउंसिल एनुअली कंडक्ट्स अ फीचर ऑफ वर्ल्ड पीस समिट टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस फॉर अचीविंग वर्ल्ड पीस थ्रू मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। द समिट ड्रॉज वर्ल्ड लिमिनरीज, इंटेलेक्चुअल्स एंड अदर सेलिब्रिटीज बिलीविंग इन वर्ल्ड पीस। From year 2009 to 2019, as many as 18 World Peace Summits has been organized at different places, namely United Nations Vienna, Sydney, Czech Republic, Zagreb, Bratislava, Wellington and Hungary. यहाँ पर हमने जो है World Peace Summits हम कराते हैं। और अभी स्वामी जी ने मुझे एक बात और कही कि आप सबको अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड पीस समिट होगा, स्वामी जी ने आप सबको उसमें इन्वाइट किया है, तो आप सब भी, हमारा जो समिट है अभी हम लोग जिनेवा में कर रहे हैं जून में, उसमें आप सब लोग आएँ, सारे स्टूडेंट्स। He is doing many humanitarian research initiatives like research center, the desert rain harvesting initiative, village water action plan, कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा। स्वामी जी के खुद के स्कूल और कॉलेज हैं जार्डन में, वहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं।

0: free of cost, and all the funds is coming from abroad, not even a single penny from India. In 1994, Vishwa Guruji founded the stone of largest project called the Om Vishwadeep Gurukul Swami Maheshwarananda Education Research Center, commonly referred to as the Om Ashram. Swami ji ne 1994 se Om Ashram ki bana rahe hain. और उसमें 2500 मजदूर 1994 से अभी तक काम कर रहे हैं, जो कि 90% कंप्लीट हो चुका है. तो स्वामी जी 1994 से 2500 मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं और उसका सारा फंड विदेश से आ रहा है. तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वी हैव क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. इस होम आश्रम में 108 कंपार्टमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स दैट आर टू बी फॉर्म इन इंप्रेसिव ऑफ होम शेप अट्रैक्ट ट्रेमेंडियस कॉस्मिक एनर्जी. 108 कमरे हैं इसके अंदर, 1108 शंकर भगवान की मूर्तियां हैं अलग अलग मुद्रा में. तो ये दुनिया का आठवां अजूबा बनना चाह रहा है, जिसके लिए जिसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2023 में करेंगे. मैनी गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हिज वर्क एंड बेस्ट ऑफ हिम वेरियस ऑनर्स एंड अवार्ड शोइंग देयर अप्रिसिएशन. आई एम ब्लेस्ड टू बी एसोसिएट विद सच ए मिरेकुलस सेंट. ही शोड मी द पाथ टू सक्सेस. ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट वी मस्ट नॉट ओनली अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट वन अदर बट ऑल्सो वेलकम ईच अदर. It is my honor to be his secretary and help him in his tireless effort for the betterment of mankind. We have special centers for animal welfare also. Swami ji has many gaushalas, as much as we have around. Abhi hamare paas 1480 gaye hain gaushalaon mein, jinka sara fund hum bahar se manage karte hain. Wo gaye hamari Nagore mein hain, ashram mein hain aur Jadan Pali mein hain aur yahan Sikar mein hain. Sara fund jo hai sab bahar se aata hai. 1480 gaye Swami ji gaushala mein paal rahe hain. The ashram also support sadhus, poor and differently abled people, marriages of underprivileged girls. We are also running rainwater harvesting projects. The artificial lake in Jadan. Swami ji ne pura artificial lake banaya Jadan mein. Barish ke time pe bhar jata hai aur jab uski pani ki zarurat hoti hai gaon mein to hum supply uska karte hain. COVID ke dauran during the first wave more than 40,000 kg of food was distributed in the Pali area, 42,000 kg in the Nagore area and 45,000 kg in Gujarat. Ashram gave food and shelter to more than 800 migrating workers who were walking to their homes. During the second wave, the ashram organized oxygen concentrated machines, covered medical expenses, home and support, home cares and meals. We also giving financial support to people who lost their families, breadwinners financially. As you can see, there is a significant welfare work which Mr. Swamiji has done in India and here in Rajasthan also. With this, I would like to thank you for your attention. Thank you, Jai Hind.
1: धन्यवाद पंडित जी. आश्रम का परिचय आपने सुना और बहुत बड़ी परंपरा को आपने जीवित किया है. हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं. मैं अब इस विश्वविद्यालय के कुलपति जिनका जीवन साधना में बीता है और शास्त्रीय साधना तकनीकी क्षेत्र के विद्वान आदरणीय ओपी छंगानी जी 35 साल के अपने लंबे शिक्षण के अनुभवों को लेकर के इस विश्वविद्यालय को जो दे रहे हैं. आप कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर रहे हैं. आपने एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग कमेटी के आप मेंबर रहे हैं. आप जैसे विद्वान इस विश्वविद्यालय को गति दे रहे हैं और आपके सामने आकर के आपका आदर्श बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है. देखिए, व्यक्ति कब आगे बढ़ता है, जब वो सामने खड़े व्यक्ति को देख करके उससे प्रभावित होता है. तो आपके समक्ष जो व्यक्तित्व है आदरणीय ओपी छंगानी जी, स्वभाव बहुत विनम्र, मतलब लगेगा नहीं कि आप किसी बहुत विद्वान के पास बैठे एक सहज में वार्ता करते हुए और अपने विषय को आगे पहुंचाने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और जो शैक्षणिक काम है दोनों में सिद्ध हस्त है. मैं ओपी छंगानी जी से निवेदन करता हूँ कि आप पधारकर इस विश्वविद्यालय का परिचय और अपना वक्तव्य दें.
2: His Holiness Vishwa Guru Mahamandaleswar Paramahansa Sri Swami Maheshwaranand Puri Ji Maharaj, मंच पर विदाय के सभी विशिष्ट अतिथिगण, विशेष रूप से हमारे चेयरमैन रवि जुनीवाल जी, जिनके प्रयास से आज ये प्रोग्राम हमारे कैंपस में हो रहा है. अपेक्स की स्थापना आज से 57 साल पहले हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर एस एम जुनीवाल जी जो एक बड़े ही कर्म योग

0: की और फिलेंथ्रोपिस्ट थे, उनके प्रयासों से शुरू हुआ और ये जो बिगनिंग हुई एक मॉडेस्ट स्कूल के रूप में हुई और धीरे धीरे इसने एक बरगद का रूप ले लिया। आज हमारे 9 कैंपस हैं। अपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से 2018 में इसकी स्थापना की और तब से लेके ये हमारा प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है। जिस विचार से अपेक्स की स्थापना हुई थी उसमें भारतीय संस्कार मूल्यों को मद्देनजर रख के और संस्था आगे बढ़ना चाह रही थी। इस पूरे 57 साल में इन 2 मुद्दों को हमने हमेशा सर्वोपरि रखा, जिसमें भारतीय संस्कृति और मूल्य हमेशा हमारे ध्यान में रहे और यही महाराज की प्रेरणा है। महाराज के मैं विचार और उनके मिशन देख रहा था, महाराज का मिशन भी यही है कि आप अपने आप को पहचानो, भारतीय संस्कृति को पहचानो, अपने समाज को पहचानो और प्रकृति को पहचानो। इन सारी चीज़ों का हमने हमारे जितने भी संस्थाएं डेवलप हुई उन सब में बच्चों में इन सब की भावना पैदा करने की कोशिश की। और अभी वर्तमान में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है कि अखिल भारतीय तकनीकी संस्था और UGC दोनों ही यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं और यूनिवर्सल फोकस जो वैल्यूज़ पे फोकस हो रहा है वो महाराज जी के दिए गए मिशन से ही निकला हुआ लगता है बिल्कुल। और उसमें आपके बारे में हमेशा ये कहा गया है ह्यूमन वैल्यूज़ में कि आप अपनी हार्मनी, आप अपने आप से हार्मनी डेवलप करें, अपने समाज के साथ में हार्मनी डेवलप करें और नेचर के साथ में हार्मनी डेवलप करें और यही आपका मिशन है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इस तीनों चीज़ों के बारे में आपके श्रीमुख से ही सुने कि हमें और आगे क्या करना चाहिए और इस संस्था को इन सारे विचारों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ और आपके जितने भी सहयोगी हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस प्रांगण को चुना इस कार्य के लिए, पवित्र कार्य के लिए, और हमें इसका मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।
1: जीवन में परिवर्तन किस तरह है इसको आपने संक्षेप में परिभाषित किया, हम महाराज श्री को तो सुनेंगे ही। उससे पहले मैं झूनीवाल जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने जो अपनी एक इतनी बड़ी संस्था को संचालित करने के लिए जो चुनाव किया है व्यक्तियों का वो बहुत अद्भुत है। एक तरफ शैक्षणिक क्षेत्र के विद्वान है तो दूसरी तरफ आर्मी से पधारे हुए एयर कमांडो आदरणीय श्री देवेंद्र जी शेखावत हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी एक कविता से हमको थोड़ा आनंदित कर देना चाहिए। सेना का अनुशासन अद्भुत होता है। स्वागत कीजिए।
2: परम पूज्य महेश्वरानंद जी, मंच पर विराजमान सभी एंड ऑल स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, इंसान अपनी जिंदगी में, हम सभी जो आज बैठे हैं और गुरुदेव से जो सुनना चाहते हैं वो एक ही चीज है, पीस प्लस हैप्पीनेस। उसकी तलाश में वो पूरे जीवन भर रहता है और मैं एक वर्ड में इसको लेता हूं, उसका नाम है सुकून। एक छोटी सी कविता बनाई है इसके ऊपर और वो हम ही सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। सुकून की तलाश में मैं फिरा इधर उधर, सुकून की तलाश में मैं फिरा इधर उधर, था मगर वो छिपा जहां, गई नहीं मेरी नजर वहां। सुकून की तलाश में मैं फिरा इधर उधर, था मगर वो छिपा जहां, गई नहीं मेरी नजर वहां। मैं सोचता रहा एक दिन मिलेगा वो, जब वो मिलेगा सब मुझे हाँ तभी दिखेगा। मैं कई शहर छोड़ आया कई गली, जिंदगी के संग चला वो जिधर जिधर चली। ये एक नई सी थी जगह, आसमान भी था नया। अपेक्स यूनिवर्सिटी, ये एक नई सी थी जगह, आसमान भी था नया। मैं उड़ा बहुत, मगर फिर जरा सा थक गया। मैं उड़ा बहुत मगर फिर जरा सा थक गया। लंबा ये सफर रहा, होश ना मगर रहा। इस उड़ान ने मुझे यहाँ बहुत कुछ दिया, इस उड़ान ने मुझे यहाँ बहुत कुछ दिया। चाहतों को पर मेरी नया मकाम दिख गया, चाहतों को पर मेरी नया मकाम दिख गया। मैं फिर उड़ा ये सोचकर कि खत्म होगी ये तलब जब दिखेगी उसकी एक झलक, खत्म होगी ये तलब जब दिखेगी उसकी एक झलक। आ गया नजर में वो जो दूर से ही दिखा, आ गया नजर में वो जो दूर से ही दिखा। एक शख्स था वह फेरे अपना मुंह खड़ा, एक शख्स था वहां फेरे अपना मुंह खड़ा। उसके पास जो सुकून था वो नहीं मिला था मुझे, उसके पास जो सुकून था वो नहीं मिला था मुझे। मैंने उससे कहा रास्ता कठिन रहा, चल सुकून को बांट ले, मैं भी आदमी बुरा नहीं। फिर हुई जो रोशनी मगर कोई नहीं, आईना था और आईने में था अक्ष मेरा। अक्ष मींस इमेज। आईना था और आईने में था अक्ष मेरा। हंसकर वो कहने लगा मैं तुझी में सदा रहा। मैं सोचने लगा यह महज मेरा जुनून था, क्या पास में ही मेरा सुकून था, क्यों मुझे खबर न था। वो कहने लगा क्यों तू खुद से इतना लड़ रहा है, दौड़ में यहां सभी मुझे तराशते हैं, नाम देते हैं कई, खाक पर छानते हैं। मैं दौड़ में आराम हूं, मैं खास नहीं आम हूं, मैं सभी में बसा हूं, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि जिंदगी जो थी तेरी चाहतों से गिरी। तीरगी में तू रहा, तीरगी मीन्स अंधकार, तीरगी में तू रहा, मैं तुझे दिखा नहीं। तू तीरगी को काट दे, रोशनी को साथ ले, अब सुकून को खोज मत, है क्या सुकून ये तू जान ले। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत आभार आपका।
3: टू एड्रेस द एस्टीम्ड गैदरिंग विद हिज वर्ड्स, श्री माथुर इज द वर्ल्ड हेड ऑफ ऑल इंडिया ट्राइबल वेलफेयर आश्रम। He is making great efforts to find traces of Indian culture in various countries of the world. He has traveled extensively in 37 countries and has expanded his work to 12 countries in the world. Major Mathur is trying to get the different cultures closer to each other. Major Mathur.
4: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस जी स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेन्द्रपुरी जी, दत्त शर्मा जी उपस्थित सम्मानित मंच, विश्वविद्यालय के आचार्यगण, बंधु भगन। आज का विषय पूरे विश्व में सनातन संस्कृति पे आधारित है। मेरा एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और मुझे बहुत ही सीमित समय में आपको विषय को रखना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं फौजी हूँ और मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं और मैं इतिहासकार भी नहीं। तो सबसे पहले जो हमने काम शुरू करा वो स्वामी जी के आशीर्वाद से 2006 में एक कार्यक्रम जयपुर में हुआ था जिसमें 150 विदेशी लोग। उसके बाद हमने इस शोध कार्य को शुरू किया और जो हमारा शोध कार्य है वो जमीन पर है। हमने कोई पुस्तकों को पढ़ के नहीं किया है, उन देशों में जाकर के वहाँ के गुरुजनों से हमें जो भी ज्ञान मिला उसके आधारित आज मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा कि पूरे यूरोप में सनातन संस्कृति, लेकिन उसमें केवल एक ही समुदाय के ऊपर विशेष हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा। हम सिद्ध करेंगे कि पूरे यूरोप में सनातन संस्कृति रही है और जो स्वामी जी कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व शांति के लिए, अगर उनको ये एहसास हो जाए कि उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक हैं तो निश्चित ही विश्व शांति शांति स्थापित होगी। ये इतने देशों में हम काम कर रहे हैं। आप देखिए पूरे यूरोप है, इनमें अनेक समुदाय हैं, लेकिन और भी अधिक हैं, हम सारी स्लाइड में नहीं डाल सके। सबसे पहले जो है वो केल्ट्स के नाम है, आपको दिखाई दे रहा है पीछे, सबसे पहला समुदाय जो है उसको केल्ट कहते हैं, वो ब्रिटेन में है। अनेक सारे देशों के नाम लिखे, देखिए ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्थ इटली, बाल्कन्स, ऑस्ट्रिया, इन देशों में रहते हैं। ये सबसे प्रमुख है जिसके ऊपर आज हम बताने वाले हैं। और ये लोग कौन है, ये 10,000 साल पहले भगवान परशुराम के समय के हैं। आज हम सिद्ध करेंगे कि ये भगवान परशुराम के समय 10,000 साल पहले और हो सकता उससे भी पहले, ये कौन लोग हैं और आज कहाँ बसे हुए हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या इनकी स्थिति है। दूसरे हैं जिसको हम बाल्टिक्स बोलते हैं, ये तीन देश बाल्टिक देश कहलाते हैं, लिथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया, और इनका प्रभाव बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा, उसको क्रूशियल कल्चर कहा जाता है। और उसके आगे चलेंगे तो स्कैंडिनेविया, फिन, स्कैंडिनेविया, और फिर हम स्लेविक्स, और जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, दोनों तरफ स्लेविक्स रहे, भाई भाई लड़ रहे हैं, रशिया में भी स्लेविक्स हैं, यूक्रेन में भी स्लेविक्स, आपस में लड़ रहे हैं, आप देखिए। और अगर आप गैल्स और स्लेविक को मिला दें तो ये 75% ऑफ यूरोप आ जाता है। और हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सारे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, ये देवी दानु है। देवी दानु जो है ये पूरे यूरोप की संस्कृति को दानुबी कल्चर कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ गंगा जमुना संस्कृति है, यूरोप में दानुबी संस्कृति कहलाती है। नेक्स्ट, दानु एक हिंदू देवी है। बहुत सुंदर मंदिर आयरलैंड जो है बाली में मिले है वहाँ, और इंडोनेशिया के लोग इसको पूछते हैं, हमारे यहाँ भी पूछते हैं, दानु देवी को पूजा जाता है, पूरे यूरोप में पूजा जाता है, लेकिन ये हिंदू देवी है। और जो दानु है एक नदी है, यूरोप की प्रमुख नदियों में दानु नदी 10 देशों से गुजरती है, उसके 4 कैपिटल सिटीज, 4 बड़े बड़े देशों की कैपिटल सिटी इस दानु नदी पे है, और वो इंटरनेशनल वाटर है, कोई भी जा सकता है। तो इस दानु का मतलब ये शुद्ध रूप से संस्कृत का शब्द है, दानु का मतलब प्रताप, द्रव्य, बूंद, ये दानु, उसको दानु बोलते हैं। और आप देख लें कितनी बड़ी नदी है और पूरी यूरोप की संस्कृति को दानु। अगर मैं आपको सिद्ध कर दूं कि ये दानु हिंदू देवी है, आप समझ लीजिए पूरे यूरोप की संस्कृति ही। नेक्स्ट, जब आप अगर आप ग्रीस जाएंगे तो वहां ये देवता को पूछते हैं, ये हियाग्रीवा है, भगवान विष्णु वहां के म्यूजियम में है, क्रीटी के म्यूजियम में है। और हम भारत में यूरोप में क्या बोलते हैं इसको, सेंटोर। तो मैं आपको बाल्कन देश में मैं आपको लेकर चला गया, वहाँ विष्णु के अवतार के रूप में पूछते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ इन्होंने ज्ञान दिया हमारे देवता। नेक्स्ट, ये देखिए वहाँ के म्यूजियम में मिल रहे हैं। नेक्स्ट, और ये देखिए वो क्या बोलते हैं, और ये कौन है हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा विवरण देना नहीं चाहता हूँ, विष्णु अवतार है, इन्होंने ज्ञान दिया, सभी ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, और कश्यप और तो दानु कौन है, ऋषि कश्यप की पत्नी, ऋषि कश्यप की पत्नी दानु। ये भगवान शिव है, सर्वेश्वर है, वहां पर ग्रिफिन बोलते हैं, पूरे यूरोप में भगवान शिव को ग्रिफिन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए वहां का राजा, क्रीटी के राजा का सिंहासन सप्तर्ष सर्वेश्वर, सर्वेश्वर अंकित है, पेंटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब आप देखिए देवी दानु जो है, मैंने आपसे कहा एक नदी है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती हमारी संस्कृति है, और हम देवी दामू के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वो ऋषि कश्यप की पत्नी है।

और वो फ्लूइड मिस ड्रॉप मैंने आपको बताया पता वो प्योर संस्कृत शब्द है। अब किसी जमाने में वो जो दानू नदी है दोनों तरफ

अगर आप इन शब्दों को मिला देंगे तो दानु वन अत्री धनुवंत्री, ये धनुवंत्री जम्मू द्वीप में हुए थे, आप मेरे से स्वीकार करें। तो ये आप देखिए धनुवंत्री का नाम हमने दानु नदी से निकाला। नेक्स्ट, दूसरा जो है दानुदी कल्चर के प्रमुख देवता कौन है, भगवान परशुराम को क्या बोलते हैं, वो उनको दंडा बोलते हैं। ये आपने देखा है गॉड दंडा लॉर्ड परशुराम, और वो यही बोलते हैं गॉड विद बैटल एक्स एंड कॉल्ड्रन, भगवान जिसके हाथ में फट देखे शांत हो जाएगी पीछे आवाज आ रही है। भगवान परशुराम को क्या बोलते हैं, गॉड विद बैटल एक्स एंड कॉल्ड्रन, उनको दगदीश भी बोलते हैं, हम जगदीश बोलते हैं, वो दगदीश भी बोलते हैं। और आप देखिए हम भगवान परशुराम के बारे में जानते हैं, लेकिन जब भगवान परशुराम ने जब वो भगवान राम से मिले, जब उनका स्वयंवर हो रहा था, उसके बाद उन्होंने अपने हथियार को डाल दिया, अस्त्र शस्त्र को डाल दिया, लेकिन हुआ क्या, हम जानते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार विश्व विजय कर ली, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम ने कहाँ कर लिया, ये हमने खोजा। हम उन देशों में गए हैं जहाँ उन्होंने खोजा, जहाँ उनकी पूजा की जाती है, और जब उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए तो उन्होंने जितने भी राज्य स्थापित किए थे वो सारे के सारे राज्य हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है वो ऋषि कश्यप को दे दिए। और ऋषि कश्यप कौन थे, दानु के पति। तो आप देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में भगवान परशुराम वहां के देवता हैं। नेक्स्ट, अब वो क्या बोलते हैं, ये जो स्लाइड है और जो मैं भगवान परशुराम के बारे में मैं बता रहा हूं, ये सारे नाम मुझे वहां के गुरुओं ने दिए, ये मेरी खोज नहीं है, वहां के जो गुरु हैं, कौन है गुरु लोग, उन्होंने बताए कौन है। और देखिए देव ऋषि को देव ऋषि बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर, ये स्लाइड वहां के गुरुओं ने दी, वो गुरु लोग कौन है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए देव ऋषि को देव ऋषि, लूगस मतलब देवता, सारे वहां का सारी भाषा संस्कृत में है, हमने एक एक शब्दों को संस्कृत में निकाला, कैसे वो संस्कृत में आ रहे हैं वो सारे देखिए, आप देख लीजिए ये लूगस, लूगस कैसे बना संस्कृत का शब्द हम बताएंगे, आप बता सकते हैं देव लूगस देव ऋषि, कोई अंतर नहीं है। और देखिए किन देवी देवताओं को पूछते हैं, भगवान शिव को पूछते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, स्वर्णनस। भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं वो सबको पूछते हैं, मत्स्य अवतार को क्या बोल रहे हैं, फिश अवतार, सेल्मन ऑफ इन्फ्यूज्ड नॉलेज। आप उनसे बोलेंगे आप मत्स्य अवतार के बारे में जाते हैं, वो कहेंगे नहीं, लेकिन आप बोलेंगे कि क्या आप फिश अवतार सेल्मन ऑफ इन्फ्यूज्ड नॉलेज को जानते हैं, वो क्या, हाँ ये तो हमारा देवता है और हमारा मत्स्य अवतार है। और मत्स्य अवतार के बाद कौन सा अवतार हुए, हमारे वारा अवतार हुए, तो वारा अवतार को क्या बोलते हैं, बोर ऑफ द बैटल। भगवान वारा ने क्या करा था, पृथ्वी को समुद्र से निकाला, तो बोर ऑफ द बैटल, बोर का मतलब वारा होता है, वो वारा बोर ऑफ द बैटल। उसके बाद वामन देवता, द्वाप का मतलब वामन, जो बोना होता है उसको वामन, द्वाप ऑफ विजडम, वो बोलते हैं डॉफ ऑफ विजडम। उसके बाद भगवान परशुराम को दगदीश भी बोलते हैं, गॉड विद बैटल एक्स एंड कॉल्ड्रन बोलते हैं, और ये कल्कि भगवान को भी पूछते हैं। लेकिन मजे वाली बात सुनिए, भगवान परशुराम के बाद के देवताओं को वो नहीं जानता, वो भगवान राम को नहीं जानता, वो भगवान कृष्ण को नहीं जानता, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि वे भगवान परशुराम के समय के गए लोग। अन्य देवताओं को देखिए स्पेलिंग में फर्क होगा, प्रोनाउंसिएशन तकरीबन वैसा ही है, धनवंतरी देवी दानु, देवता को लूगस बोलते हैं, देव ऋषि को देव ऋषि बोलते हैं, इंद्र को लह बोलते हैं, प्योर संस्कृत शब्द है लह, लह का मतलब इंद्र ही है, आप संस्कृत के डिक्शनरी में देखेंगे लह का मतलब इंद्र ही है, वो लह बोलते हैं, मनु को मनु बोलते हैं, और इसी तरह दैत्य, और उनकी पौराणिक भाषा कौन सी है, वो ओगम है, हमारी आगम है।

अंतर नहीं है। हमारे यहाँ पौराणिक भाषा आगम है, वो उसको उगम बोलते हैं। जरा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, अदरवाइज कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट, ये वहां का कॉइन है, आज ब्रिटेन में चलता है, 50 पेंस का कॉइन है। इसमें जो देवी है आप देख सकते हैं, उसके हाथ में त्रिशूल है। ये कौन सी देवी है? ये भद्रा काली है। ये आज भी चल रहा है कॉइन, आज भी आप जो जो आप जयपुर में भी आप मार्केट से ले सकते हैं। ये भद्रा काली, भद्रा काली को बोलते हैं ब्रितनी, इसी से हुआ ब्रितनी। ब्रितनी जगह है फ्रांस के अंदर, ब्रिटेन, इसी से नाम आया ब्रिटेन। आप देख सकते हैं उनकी देवी आज भी उनके कॉइन में। और ये उनका साइकिल है। ये साइकिल क्या है? ये 8 प्रमुख पर्व है, ये सारे के सारे 8 प्रमुख वहां के पंचांग से हमारा पंचांग मेल खाता है। ये सारे के सारे पर्व हमारे पर्व है, और जिस पर्व से वो जानते हैं हमने उसका मतलब संस्कृत में निकाला है, प्योर संस्कृत में वो सारे शब्द, कोई अंतर नहीं है। और वो उन्हीं तिथियों में मनाते हैं जब हम मनाते हैं। हाँ, चर्च ने उसको जरा बदला था, तिथियाँ फिक्स कर दी। हम लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, चर्च ने उनको फिक्स कर दी, तिथियाँ फिक्स कर दी। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कैल्टिक क्रॉस है, ये चर्च का क्रॉस है। ये जो मैंने इससे पहले कैलेंडर बताया था उसी को रिप्रेजेंट करता है, ये 8 प्रमुख पर्वों को। समय सीमा है नहीं तो मैं एक एक पर्व के बारे में बताता, उसका नाम क्या है, वो संस्कृत से कैसे निकल के आया। देखिए, एक पर्व हमने मनाया, ये कौन सा है? सूर्य सप्तमी। ये वहां के सबसे बड़े गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं, इनको ड्रुइड्स बोलते हैं। एक फ्रांस के गुरु हैं, और एक ये भी फ्रांस के गुरु हैं, आप मुझे भी देख सकते हैं। और ये कौन सी है? रथ सप्तमी, उसको इम्बॉलिक बोलते हैं। इम्बॉलिक संस्कृत का शब्द कैसे है आप मुझे मौका देंगे, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, ये तारा है, ये तारा स्थान आयरलैंड के अंदर, आप देख सकते हैं शिवलिंग। इसको ये बिल्कुल उज्जैन के महाकाल के स्वरूप का स्थान है, मैंने इसको उज्जैन ही बोला है, मैं इसको उज्जैन बोलने लगा। ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी, वहां का जो पंचांग है, वहां के जो गुरु लोगों का पंचांग निकलता है, हमारे यहाँ के पंचांग से खूब बहु मिलता है। वो एक प्रयोगशाला है, उन्होंने विशाल, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनाया, उनको ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन आज भी यहाँ आकर के पूजा करते हैं। ये हूबहू मिलता है उज्जैन से। और हमारे पास कविताएं आई हैं, वहाँ के जो लोग गीत गाते हैं उसमें लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम ने आयरलैंड को अक्षय तृतीया के दिन, जो उनका जन्मदिन है, वहाँ जाके अपना राज्य स्थापित। ये न्यू ग्रैंड है, 21 तारीख को 22 को 2 दिन पहले भव्य समारोह हुआ। ये कैल्टिक लोग वहां जाकर के पूजा करते, वहां सूर्य की किरणें केवल उत्तरायण मतलब कल तक, केवल उसी दिन इसमें प्रवेश करते, केवल उत्तरायण में ही प्रवेश कर सकते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये तारा परिसर का भाग है, और हम उज्जैन के ऊपर शोध करने वाले हैं, उनसे सीख करके शोध करने वाले। वो बहुत सारे चीजें हमारे लोग भूल गए, उन मंदिरों को भूल गए। अब हम उनको मंदिरों को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी सूर्य की किरणें महाकाल से होते हुए किस मंदिर पे जाके गिरती होगी और तिथियां तय होती होगी, इसका हम शोध करने वाले हैं। और आप देखिए कितना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप देख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है हमारा। नेक्स्ट, ये देखिए वहां के गुरु, ये द्विज हैं, ये द्विज लोग हैं, ये द्विज लोग हैं, ये आयरलैंड के द्विज लोग हैं। नेक्स्ट, और आज भी अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं। मैंने पूछा कि आप तीर कमान से क्यों देते हैं, कहते हैं इनको प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट, और ये स्कॉटलैंड का कैलेंडर है, ये पूरा संस्कृत में है। आप देखिए मई का महीना, देखिए ये अक्षय तीन है, मई का महीना देखे, ये अक्षय तीन है, और दिवाली उनका नववर्ष है। और उस दिवाली को क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर जाइए नवंबर में, अन-ए-एन-टी समय, वो उसको समय बोलते हैं। लेकिन ये शब्द क्या है? अन्तस्मय, हम बोलते हैं तस्मय गुरुवे नमः, अन्तस्मय उस देव

0: देवता पूर्णमानी, अनंत देवता पूर्णमानी, उनका नव वर्ष है दिवाली। पूरा का पूरा कैलेंडर संस्कृत के अंदर आप देख लीजिए, मार्च का महीना AM MA को ज्वाइन कर लीजिए, ये बगदा अमृत। तो अमृत क्यों है मार्च, क्योंकि अमला 11 आती है, अमला 11 मार्च में आती है, अमला अमृत। कितना पौराणिक कैलेंडर हो। नेक्स्ट, अब मैं आपको उन देशों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको कैल्टिक देश कहते हैं। वैसे तो पूरे यूरोप में ही लोग और आज भी भगवान परशुराम को पूज रहे। तो ये देखें, उधर आयरलैंड है, IIER आयरलैंड है, ऊपर इंग्लैंड के जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, उसके तीन प्रांत स्कॉटलैंड वेल्स कॉर्नवेल्थ, ये भगवान परशुराम के समय के कर रहे हैं। धन्यवाद।
1: अग्रिम व्याख्यान के लिए, योग के ऊपर व्याख्यान के लिए मैं आदरणीय स्वामी अवतार गुरु जी को आमंत्रित करता हूं। अवतार गुरु जी,
2: सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self, Salutations to Srila Purjasthita Peetha Parampara. My dandavat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Swami Maheshwaranand Puriji Maharaj, respected guests who are sitting on the stage and who are gracing us with their presence, all the students, lovely brothers and sisters who are sitting in front of me, and to all our dear Guru brothers and Guru sisters who came with Swamiji. जैसे आपने पिछले व्याख्यानों में कपिल जी द्वारा और अन्य व्याख्यानों के द्वारा आपने सुना ही है कि हमारे पूज्य गुरुदेव पिछले 55 वर्षों से पूरे विश्व में सनातन धर्म का, योगा का और इन सब का, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के पूरे विश्व में 3,500 से भी ज़्यादा आश्रम्स, योगा सेंटर्स हैं, जहाँ डेली योगा सेशंस, योगा क्लासेस, वीकेंड सेमिनार्स, These all seminars are conducted there. मेरे को आश्चर्य होता है कि हम लोग आजकल के यंगर जनरेशन, वी आर द फ्यूचर, तो हम लोग को पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वी ट्राई टू कॉपी द पीपल दे हु आर लिविंग देयर इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग आवर ओन कल्चर विच इज़ आवर इंडियन कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमारे सामने जो स्वामी जी के साथ आए हैं हमारे गुरु ब्रदर्स एंड गुरु सिस्टर्स, सब लोग भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार वो पोशाक पहनते हैं। और हम लोग क्या करते हैं आजकल की न्यू जनरेशन, जीन्स इज ओके, दैट्स फाइन, बट उसमें फिर आपके दे हैव टेयर्स इन देयर नीज और ये वो, दैट्स ऑल फैशन। हम लोग भूल रहे हैं कि हमारे रूट्स कहाँ हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट द रूट्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमारे रूट्स यहाँ हैं तो वी शुड स्टिक ऑन दैट। हम लोग को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए। चाहे आप ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ें, आप कहीं पे भी किसी भी ऊंचाई तक आप पहुँच जाए, पर आप अपने रूट्स ना भूलें कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारी शुरुआत पूरे विश्व की सारे भाषाओं की, इस संसार में जितनी भी भाषाएँ हैं, सारी भाषाओं की शुरुआत किससे हुई थी? संस्कृत से। जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि सारी भाषाओं का उद्गम संस्कृत से हुआ है। तो वी शुड नेवर फॉरगेट कि हमारे रूट्स सारे मात्र बिकम मदर, भ्रातृ, ब्रदर, इतने सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अभी भी है इंग्लिश में, है क्रिएशन में, देयर मेनी वर्ड्स व्हिच आर सिमिलर। लोग बोलते हैं कि भारत विश्वगुरु था और हमें वापस उसको वापस विश्वगुरु बनाना है। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। और हमें भारतीय संस्कृति का बचाव करने के लिए हम ही लोग हैं जो आगे भविष्य में जाकर इस संस्कृति का बचाव कर सकते हैं। अभी हम सब पढ़ रहे हैं, वी ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आई एम ऑल्सो स्टडिंग, तो हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अच्छे से पढ़े लिखे, वी शुड स्टडी, वी शुड नो वॉट वी वॉन्ट टू डू इन आवर लाइफ एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर आवर रूट्स एंड गो ऑन एंड फॉलो द पाथ एंड नेवर फॉरगेट. जैसे गुरु कृपा ही केवलम, दिस इज वॉट वी फोकस ऑन. गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य के आनंद मंगलम. सर्वप्रथम गुरु कौन होते हैं? हमारे माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया है. फिर कौन से गुरु आते हैं? जो हमारे अध्यापक गण हैं, जो हमें पढ़ाते हैं. जो भी इंसान आपको कुछ भी प्रकार की शिक्षा दे, दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी योर पेरेंट्स, दैट कैन बी योर अंकल, योर एनीवन हु गिव्स यू एनी टाइप ऑफ नॉलेज इज अ गुरु इन वन सेंस. बट द हाईएस्ट गुरु इज द श्री सद्गुरुदेव, हु कैन गाइड यू एंड हु कैन मेक यू वन विद द लॉर्ड. गुरु ही ऐसा ऐसे महापुरुष है जो हमें समुद्र के इस किनारे से इस किनारे तक पहुंचा सकते हैं. तो जब तक हमारे पास श्री गुरुदेव सद्गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होता है, तो हमारी ज़िंदगी असफल होता है. तो इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा साष्टांग नमन प्रणाम, और हमारे गुरुदेव के मुख से अभी सुनेंगे हम लोग. और स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेण मार्गेण महीन महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु. नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शलपुर्जी महादेव की जय. देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय. श्रीनारायण भगवान की जय. हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय. विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरजी योगिराज की जय. हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो.
3: आभार स्वामी अवतार गुरु जी का, आपके गुरु परंपरा और भारत के विश्व गुरुत्व का संदेश दिया है इस मंच से. मैं अब स्वामी योगेशपुरी जी को आमंत्रित करता हूँ. योगेशपुरी जी जो महाराज जी के साथ ओम आश्रम जो बन रहा है उनके मूल आर्किटेक्ट हैं. आपकी विधा का जब आप लोग ओम आश्रम जाके देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपका परिश्रम, आपका जीवन के लगभग 25 साल से अधिक का समय हो गया होगा, आपने इस समर्पण से गुरुदेव के साथ काम किया है. आदरणीय स्वामी ओम योगेश्वर,
4: आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इट इज इंडियन कल्चर वर्ल्ड वाइड एंड योगा एंड संस्कार. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर ऑफ भारत इज व्हेन वी केम एंड वी वर रिसीव्ड विद सो मेनी हैप्पी स्माइल्स, welcoming smiles, rangoli, flower malas, and muli. And here I have this beautiful gulab as a token of love and respect. That is the culture. It is said Bharat, not India, Bharat is the guru of all world. Matursa explained very much, very nicely how the Bharat, the culture of Bharat was all around the world. Yes, it was. But today we are in Kali Yuga, the shortest and the most beautiful of all Yugas, of all four Yugas. Now the Bharat, the Europe, slowly transferred into the desert. Europe is known in the world as a very wealthy part of the world, very wealthy continent. Yes, materially, but spirituality, it is slowly transferred into the desert. And Bharat is Kashmir. Bharat is the beautiful garden where still the old tradition, old culture is present. Nowadays, you are importing the sand from the Europe. Yes, nothing is wrong in the cars, houses, good standard. Everyone should have the house, beautiful car, and beautiful standard. But we should not forget our culture. Our culture, which is teaching us or giving us knowledge how to live together nicely, peacefully, harmonious. The Bharat is exporting what? Knowledge. Ashivat of Rishi Munis. Gurudev came to my country. It is a very small country, Slovenia. There are only 20 lakh of population there, means 2 million. It is a small part of the Jaipur. But we have 116 yoga centers and ashrams where Guruji and his disciples are teaching what it was taught in the ancient Bharat, in the Gurukuls. Because we are talking about education. Yes, we are all educated here, but this is one-sided education. The bird to fly needs to have two wings. It means we need to have very good material education to live comfortable, happily life, and we need to have the spiritual education because we are, in the end, we are spiritual beings. When I was young, I did not believe in the God. That was Sanskriti of my country. When I met Gurudev and I was blessed to meet him, I said, what a knowledge! What is this knowledge? Completely changed my life. When I understood first time that we are immortal beings, then what to worry about everything, anything. You see, I will just tell you one small difference between the European culture and the Hindu culture. In Europe we say, after our time will come, expired, then we will die. We are all afraid of the death. In India, we say what? Mokshmilenge. We will be reborn. So, I wish to every one of us to, beside the material education, also to learn the spiritual education. Because, as we say, we cannot change the world, but we can change ourselves. With this, I will finish my humble talk, and thank you very much to all of you for inviting us to this
5: धन्यवाद आदरणीय स्वामी योगेश गुरु जी आपने भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति का समन्वय करते हुए भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा की है और अपना जीवन समग्र भारतीय संस्कृति को समर्पित किया है ये आपकी अद्भुत तपस्या है मैं आप स्वामी प्रेमानंद पुरी जी से आग्रह करूंगा वो ये वो तपस्वी हैं जिन्होंने महाराज जी के आश्रय में महाराज जी के इस कार्य को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दिया है ओम आश्रम हो चाहे बड़ी खाटू हो चाहे कैलाश हो चाहे जयपुर परिसर हो चाहे विदेश की सारी संस्थाएं आपने उनको सुदृढ़ करने में अहोरात्र यत्न करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है आदरणीय स्वामी प्रेमानंद
6: Respected Vishwa Guruji, Manaleshwar Swami Ganeshwar Guruji, Kapil Muni, Swami Avada Guruji, all dignitaries on the stage, foremost of all professors and students, because without students, no need of a teacher, professor. So you make it actually happen that we are here today. Thank you much. As Swami Yogesh Puriji mentioned about the culture, our Guruji sometimes, Vishnu Guruji sometimes was joking, the best culture is the agriculture. Because from the agriculture, we get actually nourished. Our body gets nourished. our life

0: becomes sustainable. And for every agriculture, we have to learn how to grow the crop, how to run, when to plant. And for this, we need also a teacher, be it parents, be it friends, or whoever. When I came to India, I was astonished that students call their professors Guruji. Yes, Guruji. Yes, Guruji. And that is the beautiful thing in India, because Guru has a very deep, the name Guru has a very deep meaning. Guru, one who dispels darkness and gives knowledge, leads us towards the light, be it in the material world, be it in the spiritual world. We come here to the university to study. We study to get knowledge, to function in the world, to get a profession, and to go out into this world to sustain ourselves, our families, to plan our future, and to be an integral and a useful tools within our society. There are two types of main knowledges, that is, paravidya and aparavidya. And both go hand in hand throughout the life. If we one neglect, the other one gets out of balance. Aparavidya is what we learn here. It's connected to the material world, to the senses, to the intellect. And paravidya comes when we start to ask ourselves and look into ourselves, who we are, from where we are coming, and where we are going. This knowledge is very much connected to an introspective way of teaching, and for this we need another type of teacher, another type of professor, who knows that knowledge and he can give further. It's connected with the way of yoga, of spirituality. It has to do something with a kind of longing. It's the knowledge of the self. Many of you have heard about Patanjali Yoga. Yoga Sutras. There you will find the secrets, the diamonds, and the way how to get to this knowledge. It's about Vairagya, Viveka, Sapsambati, and latest of Mumukshva, the strong longing to know who are you, what is yourself. Aparavidya you can learn everywhere. You have time, 60, 70, 80 years in your life. But for the other one, you have many, many, many lifetime. In that sense, I wish you all the best for your work, for your studying, for your future professions, and thank you for inviting us here today for this great, and give us the great opportunity to present ourselves in that way, what we are thinking, what we are feeling, and I wish you all the best for your future. Thank you.
1: आपका स्वामी देवानंद कुल जी पराविद्या और अपराविद्या पे आपने चर्चा की और योग पतंजलि सूत्र तक आपने बात की है तो आपका भारतीय संस्कृति में गहन रुचि और समर्पण अद्भुत है। मैं अब हमने आज के विषय पर जो विश्वव्यापी भारतीय संस्कृति थी तो विश्व व्यापकता पे चर्चा की आदरणीय मेजर साहब ने, योग पे चर्चा अवतार पुरी जी ने और प्रेमानंद जी ने, और अब संस्कार पे चर्चा करने के लिए गुरुजी आदरणीय श्री पंडित महेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। और मैं थोड़ा आग्रह करूंगा कि बिंदु जी को स्पर्श करते हुए विनय पत्रिका को स्पर्श करते हुए आदरणीय दादा जी कहें।
2: वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिण यमाश्चतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु परंपरा मंगलाचरण के साथ आज मेरा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि अगर संसार में सुख कहीं मिले और सुख क्या है तो वो गोस्वामी जी की अर्धाली से मैं निवेदन करूं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। और संत के साथ दरिद्रता लगी हुई है इसी पंक्ति में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही पर संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता नष्ट हो जाएगी जब संत मिल जाएगा। और आज इस अपेक्ष इस पुनीत पावन भूमि में पुनीत चरणों का आगमन श्री परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय विश्वगुरु श्री शंकर स्वरूप महेश स्वरूप श्री महेश्वरानंद जी महाराज को इस महेश का मुहुर्मुहु प्रणति स्वीकार हो। पावन पादारविंद में प्रणाम करता हुआ सभी मंचस्थ, और मैं तो एक श्लोक याद था कि एता पुरी मोक्षदायिनी, ऐसी पुरियाँ मोक्ष देने वाली है, पर वो पुरियाँ अपने को जाना पड़ेगा तो मिलेगी। या तो हमारे ज्ञानपुरी जी बैठे हैं, ज्ञानेश्वरानंद जी बैठे हैं, तो वो भी पुरी समष्टि है। सप्तम पुरियों में का समष्टि स्वरूप माँ मंडलेश्वर जी को प्रणाम, साथ में माथुर साहब हमारी बहन जी कोचर बहन जी एवं जूनीवाल साहब कपिल जी भैया एवं सभी मंचस्थ विद्वज्जन मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, संस्कार से ही संस्कृति जीवित रहेगी। और ये भारतीय सनातन का बड़ा सुंदर सिद्धांत है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु बन सकता है, बन सकता नहीं है, पीछे था और आगे रहेगा। क्यों रहेगा? कि संस्कार का जन्म ही भारत देता है। ये रामचरितमानस का बड़ा सुंदर उदाहरण है कि यह जीव जब संसार में नहीं आता है उसके पहले संस्कार आता है, गर्भाधान संस्कार। जीव नहीं आता है, उसके पहले ही गर्भाधान संस्कार आता है और उसके बाद 16 संस्कार। ये तो वैदिक संस्कार है, समय की अतिक्रमणता है, करूंगा नहीं। जितना मुझे समय दिया मैं गोस्वामी जी के विनय पत्रिका मानस और महाकवि बिंदु जी उनकी एक पंक्ति से संस्कार का उपक्रम कर रहा हूँ कि वैदिक संस्कार, क्योंकि भारत में दो संस्कृति है, एक ऋषि संस्कृति और एक कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति वेद से जुड़ी हुई है और कृषि संस्कृति लोक रीति से जुड़ी हुई है। देखो, कृषि संस्कृति में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, फिर भी घर में प्रातःकाल जब बच्चे उठते हैं तो हमारे बड़े लोग कहते हैं का बेटा उठो और प्रणाम करो। किसको करो? पहले पृथ्वी माँ, फिर अपनी माँ, फिर अपने पिता, फिर अपने गुरु। तो प्रातः काल, ये मानस बोल रहा हूँ, प्रातः काल जागे रघुराई ना वही मात पिता। माता पिता और गुरु, उन तीनों को प्रणाम करते हैं। ये पहला संस्कार है, युवाओं को निवेदन कर रहा हूँ जो गुड मॉर्निंग और इवनिंग करते हैं। प्रणाम शब्द का बड़ा भारी अर्थ है, और प्रणाम करने के बाद लाभ क्या है? आज के बच्चों को लाभ चाहिए तो मैं बताता हूँ कि प्रणाम करने से क्या लाभ होगा। चत्वारो तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो फलम्। मैं आपको इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। इन बच्चों से निवेदन करूंगा कि प्रातः काल उठो, उठते ही पृथ्वी माँ को प्रणाम करो और उसके बाद सामने माँ पड़ जाए तो माँ तो पड़ेगी, उठाती माँ मम्मी है आजकल का, बेटे उठो चाय पी लो, माँ भी आ जाए क्योंकि वो मम्मी हो गई, माँ होती तो कहती बेटे प्रणाम करो। अस्तु, मैं संस्कार पे बोलने आया हूँ तो संस्कार हमको ही देना पड़ेगा, शास्त्र तो बताता है संस्कार देना पड़ेगा, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रातः काल ये बच्चे जब उठे तो उनसे यही कहो कि चाय तो बाद में पिलाऊंगी, पहले मुझे प्रणाम करो फिर पिताजी के पास जाओ, उसके बाद गुरु हो सामने तो ठीक है, नहीं तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु, भारत की ये संस्कारवान ऊर्जा जब तक रहेगी तब तक ये सनातन सदैव, सनातन तो कभी समाप्त होगा ही नहीं। कोई भी ऐसा देश हो, ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका, ये देश, ये पूरा भारत ही पूरा विश्व है, क्यों है? क्योंकि जब ऋषियों के समक्ष जब कोरोना जैसी बीमारी आई, पहले आई होगी तो दुर्गा सप्तशती में भगवान से प्रार्थना करी, भगवती से प्रार्थना करी, यास्त्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदियाम हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाम कुलजन प्रवश्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपाले देवी विश्वम। विश्व का परिपालन करना भारत का नहीं, वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम, ऐसी जो संस्कृति है ये जिंदी संस्कार से है, इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे इन बच्चों से, इन विद्यार्थियों से, इनके अध्यापक बंधुओं से, गुरुजनों से कि अपना लेसन पाठ चालू करने के पहले संस्कार पे एक मिनट नित्य दें। तो बच्चों में जब संस्कार की ऊर्जा होगी तो शास्त्र तो हृदयंगम होंगे ही होंगे। आज शास्त्र याद क्यों नहीं हो रहे हैं, स्मरण क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि संस्कार नहीं है, रटंत विद्या है। शास्त्र को शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे, शस्त्र की दृष्टि से देखेंगे और गुरु को गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो विनिश्चित सिद्धि होगी, इसमें तनिक संदेह नहीं। अस्तु, संस्कार जीवन में तो प्रातः काल उठते ही प्रणाम करना पहला संस्कार, फिर जो भी माता पिता को प्रणाम करेगा बालक, गुरु को प्रणाम करेगा बालक, तो तीनों का आशीर्वाद मिलेगा कि बेटे आयु आरोग्य ऐश्वर्य बल ये सब आपको मिले, इसमें धन नहीं है, पर ये चारों होगा तो धन तो पीछे पीछे आएगा, आगे नहीं। इसलिए हमारा जीवन संस्कार में रहे, क्योंकि गोस्वामी जी बार बार यही कहते हैं कि श्रीमद् रामचरितमानस संस्कारों का ग्रंथ है और गीता आचार्यों का ग्रंथ है। गीता में कहा वो करो और मानस में किया वो करो, मानस आचरण संहिता है और श्रीमद् भगवत गीता आचार संहिता है। और इन दोनों का इन बच्चों को अगर हम परिचय दे देंगे तो विनिश्चित है कि ये बालक जो आज बड़ा दुराचरण हो रहा है, बार बार अखबारों में आ रहा है, संस्कारवान हो जाएंगे तो किसी प्रकार का संविधान का या दंड की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। संस्कार नहीं रहे इसलिए आज हम संस्कारवान नहीं रहे, संस्कारवान रहेंगे तो निश्चित सनातन संस्कृति जीवित रहेगी। और संस्कार क्या है कि हम नित्य करें तो बच्चे, हम करेंगे वही तो बच्चे करेंगे, हम ही हाई हाई टाटा करेंगे तो हाई लग जाएगी और हम ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि नमस्ते कहना चीज अलग है, नमस्ते क्रिया है।

0: नमस्ते कोई वस्तु है ही नहीं, नमस्ते क्रिया है, कहने से नमस्ते नहीं होती है। प्रणाम करना क्रिया करो, नमस्ते हम आपको प्रणाम करते हैं, अस्तु। हर शब्द का हमारे यहाँ जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे राम टिंकू टिंकू जपो देंगे, किंटू किंटू जपो देंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि निरर्थक शब्द है। और रकार मकार शकार अकार, जैसे शम शिव शिव जपेंगे तो क्या मिलेगा, राम राम जपेंगे तो क्या मिलेगा, कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो क्या मिलेगा। भाई जब हमारी चीज तो जब बिकेगी, जब उसका महत्व तो बताएंगे। लाभ कभी तो लोग भागते हैं, तो शम तनोति शंकर, अधिक बोलूंगा नहीं क्योंकि समय का अभाव है। पर मैं एक पंक्ति के साथ, बिंदु जी की एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि देखो, ज्ञान योग जप तप, इनका मूल में है भक्ति। बिंदु जी बोल रहे हैं, बिंदु जी कह रहे हैं भगवान के सामने, भक्त बनता हूँ पर मैं अधमों का सरताज भी। अभी कविता बड़ी सुंदर आपने शकुन की कही कि जीवन में शकुन ही तो सब कुछ है। तो गोस्वामी जी बिंदु महाराज जब भगवान के सामने प्रकट हुए तो कह रहे थे ने क्या क्या किया कि भक्त बनता हूँ पर अधमों का सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ये बिंदु जी महाराज बोल रहे हैं। समय का अभाव है, संस्कार से संस्कृति का ये सुंदर समन्वय। और मैं तो डॉक्टर सुरेंद्र जी और डॉक्टर रघुवीर जी, इन लोगों की वजह से मैं तो आता जाता हूँ। और मैं तो अपना ही राम को रिझाऊँ, जीवन में मैंने 52 वर्ष तक अद्यावधि, आज तक तो हवन हुआ, कल का पता नहीं क्या होगा, अग्निदेव से मेरा बड़ा प्रेम है, पंचोपदेव उपासना में मेरा बड़ा प्रेम है। आपको भी यही कहूँगा कि आप अपना परिचय दें, अपनी संस्कृति का परिचय बच्चों को दें, तो निश्चित संस्कारवान होगा। और जब संस्कारवान होगा तो क्या होगा, सुख मिलेगा। और जब सुख मिलेगा तो परम सुख की प्राप्ति होगी। और परम सुख की जब प्राप्ति कब होगी, जब ऐसे निश्चल संतों के चरणों की अनुरक्ति होगी। इन्हीं के साथ मैं अपनी बहन को विराम दे रहा हूँ, पुनः चुनना चाहूँगा।
1: बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर पुष्पलता जी को आमंत्रित करता हूँ। समय की हमारी थोड़ी सी सीमा है, अति संक्षिप्त में विषय प्रवर्तन करूँगा।

0: नमः परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, आदरणीय ज्ञानेश्वर गुरु जी महाराज, मंच में विराजमान विद्वतगण और हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो संस्कार और योग को जानने के लिए आए हुए सभी विद्यार्थीगण और यहाँ के अधिकारीगण। भारत वह विश्व का गुरु था। जब सारा यूरोप अज्ञान की निंद्रा में सो रहा था तो भारत के अंदर सबसे पहले ज्ञान के स्वर झंकृत हुए थे। सा प्रथमा संस्कृति विश्व वारा, जिसका मनु महाराज ने कहा है, एतद् देश प्रसूत से सकाशा दग्र जन्मना सोमसम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्व्याम सर्व मानव। ये वह भारतवर्ष देश है जहाँ के ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके देश देशांतर के लोग ज्ञान विज्ञान और चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। इतना सुंदर हमारा भारतवर्ष देश था। भारत मतलब जो ज्ञान विज्ञान से आलोकित वो भारतवर्ष देश है। और आज का जो विषय है योग, योग मतलब जो हमारे जीवन में आनंद को भर दे, सुख को भर दे, शांति को भर दे, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना दे, मन को शांत बना दे, आत्मा की उन्नति कर दे, मोक्ष की प्राप्ति करा दे, उसका नाम है योग। और दूसरा अपना संस्कारों के बारे में कहा है, संस्कार कर जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते। संस्कारों से ही मनुष्य का विकास होता है। मैं एक संस्कार के बारे में बताती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे 2-4 मिनट का ही समय दिया है, तो एक संस्कार के बारे में बताती हूँ। जब जातकर्म संस्कार होता है, जब बालक का जन्म हो जाता है तो उसकी जीवा पर ओम लिखा जाता है। ओम इसलिए लिखा जाता है जीवन के जितने सारे पता नहीं तेरे साथ रहे न रहे, उस परमात्मा का सारा लेना जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। ओम मतलब रक्षा करने वाला, परमात्मा सबसे बड़ा तेरा रक्षक है। इसी तरह उसको कान में कहा जाता है, पिता उसको कान में कहता है बालक को, वेदों से तेरा आचरण वेदानुकूल हो। वेदा में वेद में क्या कहा है, मनुर्भव, हे मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव बनो। मनुष्य किसको कहते हैं, जो अपने सुख दुख के समान दूसरों की सुख दुख की कल्पना करता है वह मनुष्य कहलाता है। तो मानव बनने का उपदेश देता है पिता अपने पुत्र को। इसी तरह फिर बाद में पिता कहता है अश्मा भव, पत्थर बन जा। आप कहेंगे अपने पुत्र को पत्थर बनने को क्यों कह रहा है, पत्थर बनने को इसलिए कह रहा है जीवन के जितने भी तू काम कर सब कुछ कर, लेकिन अपना जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, गुरु भक्ति करना, उसको कभी मत भूलना। इसी बार में फिर बाद में कहते हैं परशु भव, फौलाद की तरह बन जा, तेरे देश में शत्रु आक्रमण करने डट करके मुकाबला करने वाला बन। और लास्ट में कहता है हिरण्य मस्तृतम भव, सोने की भांति चमक, सूर्य की भांति चमक, तेजस्वी बन, वर्चस्वी बन। और मैं आदरणीय गुरु महाराज जी के बारे में क्या कहूँ, स्वामी जी महाराज ने सारे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को जन जन में फैला दिया। केवल योग को ही नहीं फैलाया, स्वामी जी महाराज ने सारी मतलब भारतीय संस्कृति को फैलाया, दूसरे सबको शाकाहारी बना दिया, सबको मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए उसके बारे में बताया। तो स्वामी जी का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। स्वामी जी के उपकार सारे विश्व में उन्होंने भारतीय जो हमारी वैदिक संस्कृति का उसका जो डंका बजाया,
1: कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मैव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा प्रेम करुणा दया यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
2: So you want me to appeal to my okay
3: in America,
2: okay,
3: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
2: Look, Yoga and
3: Daily Life Foundation, Austria or India?
2: Okay.
3: India. Yoga and Daily Life
2: Yoga
3: Foundation.
2: In
3: Yoga in Daily Life
2: Yoga in Daily Life
3: Foundation
2: in Austria.
3: No, New Delhi.
2: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
4: In rupees?
2: Yes.
4: Thank you. Ke dollar?
2: Did I say?
4: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So, Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagor.
2: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरो। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्यंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट हो इस

जबकि तुम इंडिया के ही हो. सो योगा इज नॉट ए रिलीजन, नॉट ए फैनेटिज्म. इट इज योगा इज ए कॉस्मिक लॉ, द कॉस्मिक साइंस. योगा इज ए यूनाइटिंग, बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग, एंड दैट इज ओम अकार उकार मकार, एंड दैट एको हम बहुश्यामी, दैट टाइम वॉज नो नेम ऑफ एनी गॉड. उपनिषद हैज नो नेम ऑफ एनी इनकारनेशन, वेदास हैव नो नेम ऑफ एनी इनकारनेशन, ओनली ब्रह्मन. सो यू से होली फादर एंड वी से द ब्रह्मन. सो साइंस ऑफ योगा एंड भगवान शिवा स्वयंभू, ही इज द ऑथर ऑफ द योगा. मंत्र यंत्र जंत्र ज्ञान ध्यान मेडिटेशन योग वॉट एवर ऑल बट ह्यूमन नोज टूडे इज द ब्लेसिंग ऑफ द शिवा गिवन टू द मैन काइंड इन ऑर्डर टू सर्व ऑल क्रिएचर्स एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन्स फ्रॉम द आसुरी शक्ति एंड लीड टूवर्ड्स द दैविक शक्ति. सो आई एम श्योर पीपल विल एप्रिसिएट, पीपल विल, द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग द 21st of June, and they are thanking the Modi ji, and our Brahmalina Pujya Anandanand ji Maharaj, his Mahasamadhi day, Brahmalina day, is also 21st of June. So how? So we can celebrate Day of Yoga and Swamiji's Barsi celebration. So, my dear India, still Indian Bhaktas, Indian people, every Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, all they are helping the Nepal people, and many, many people from many, many countries, they are coming. We are thankful for them. And we pray to Almighty that it should not happen such thing anywhere to anyone. So thank you for coming. And if you would like to announce or give, we met within 3 days, so we can organize some trucks to bring the food. So not from the Jaipur, because half एक्सपेंडिचर तो ये ट्रक के पेट्रोल में खत्म हो जाएगा. सो वी विल ट्राई टू बाय ऑल दिस मटेरियल. यू विल सेंड द ट्रक, बट ऐसा है कि यहाँ से नेपाल की बॉर्डर तक आने जाने का कितना हजारों का डीजल बलेगा. वाट एवर, ओके. सो वी शेल सेंड फ्रॉम हियर. हरिचंडी बताएंगे, हमारे रिस्पेक्टेड वसुंधरा जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सो द ग्रीन लाइट एंड वी कैन सेंड सम ट्रक एंड सम फूड. सो थैंक यू वेरी मच टुडे. व्हाट एवर यू विल गिव आई विल अप्रिशिएट इन नेम ऑफ द नेपालीज. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. ओम रिमेन विल ओम, धर्म विल रिमेन द धर्म. एंड इफ यू लाइक टू प्रैक्टिस, okay, if you don't like to practice, it's okay. But if you practice yoga, it has nothing to do with my religion or your religion. It has to do with your good health, your peace of mind, anti-stress, and for the spiritual development, it is the science. Therefore, Om should remain. You all should write, please, a letter immediately, as soon as possible. बोल सतगुरु देव की, दीप नारायण भगवान की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की. ओम, सभी बोले.